खोज शब्द राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोय ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण।

सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सत्संग जीओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जीओ। दास नूं सेवा बख्शिश होई है नितनेम वास्ते आप जी कृपा करके अपने अंदर अंदर सिमरन करने की कृपालता करो। नितनेम की आवाज़ कन्नां दा सरवण करके असी मूँह नाल सिमरन भी कर सकते हैं। सच्चे पातशाह अगे अरदास करके शुरू करने की कृपालता करनी जीओ। वारी अनुसार जिहड़ा भी होर सिंह अपना अगले पाठ करना चाहते हो अपने माइक लगा के अगले बाणी के पाठ शुरू करने की कृपालता करे जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत।

पाप का नाश मरने की गत कही न जाए। जेको कहे पीछे पछताए कात कर न लिखन हार, मरने का वह करण विचार ऐसा नाम निरंजन होए। जेको मन जाने मन को मन है सुरत होए, मन बुद्ध मन है सगल पवन की सुध, मन है मोह चोटा न खाए, मन है चमके साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए। जेको मन जाने मन को मन है मार्ग ठाक न पाए, मन है पथियों पर गट जाए, मन है मग्न चले पंथ, मन है धर्म से ती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए। जेको मन जाने मन को मन है पावे मोक्ष द्वार, मन है परवार साधार, मन है तरे तारे गुरसिख, मन है नानक पवन भिख ऐसा नाम निरंजन होए। जेको मन जाने मन कोई पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मान, पंचे सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक त्यार। जेको कहे करे विचार, करते के करने ना शुमार, तौल करम दया का पूत संतोख था प्रख्या।

कुदरत कवन कहा विचार वारन जावा एक बार ज्योत पावे साई पलिका तू सदा सलामत निरंकार संग मूरख अंध कोर संग चोर हराम कोर संग अमर कर जाए जोर संग गलवड़ हत्या कमाए संग पापी पाप कर जाए असंग कूर यार कूड़े फिराए असंग मलेश मल पखाए असंग निंदक सर करें पार नानक नीच कहे विचार वारन जावा एक बार ज्योत पावे साई पलिका तू सदा सलामत निरंकार असंख नाम असंख थाम गम गम असंख लो असंख है सिख भार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान की पुनगा अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे ते सिर नाए जे फरमाए ते ते पाए जेता कीता तेता नाओ बिन नामे नाही को थाओ कुदरत कौन कहा विचार वारे जावा एक बार ज्योत उत्पावे साई पलिका तू सदा सलामत निरंकार परिये हथ पैर तंदे पानी धोते उतरस के मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लिये धोए परिये मत पापा के संग ओ तोपे नावे के रंग पुन्नी पापी आखन

வாயசோ எக்காவார் கத்தருக்கு செஞ்சன்ஹார் நானக சக்திக்கு சாட்சிக்கார் ஆதேஷ் திசை ஆதேஷ் ஆத் அனீர் அநாத் அநாத் ஜிபிஜித் எக்கோவேஷ் एक दूजी वो लखो है लखो में लखवीश लख लगेड़ा आती है एक नाम जगदीश ए त्राए पत्को बढ़िया चढ़ियो है एक ही सुनगला आकाश की कीता आई रीस नानक नगरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखन जोर चुपे न जोर जोर न मंगन तेन न जोर जोर न जीवन मरण ना जोर जोर न राजमाल मसो जोर न सुत्ती ज्ञान विचार जोर न जुगती छोटे संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम

के रूप न कितने जा हैं, ना वे मरे न ठागे जा हैं, जिनके राम वसे मन माँ हैं, जिथे भगत वसे के लो करे आनंद सचा मन सोए, सच खंड वसे निरंकार कर कर वेखे नजर निहाल, जिथे खंड मंडल वर भांडे जे को कते ता अंत न अंत, जिथे लो लो आकार जीव जी हुकम तिवे तिवकार, वेखे विकसे कर विचार नानक कितना करड़ा सार, जत पहारा तीर सुनियार है रंग प्रेद हथियार, पाओ कला गन तपताओ पांडा पाओ अमृत काल, अड़िया सब सची टकसाल जिनको नजर करम चिंकार, नानक नदरी नजर निहाल, पाओ कला गन तपताओ पांडा पाओ अमृत

ये रूप रंग देख परम वेद पुराण जाके नेत पाक नेत पाकत नित्य और सिमरत पुराण शास्त्र न आवई व चित्ते मद वार्षम तो प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार आसन पंग उपमा अनंग अन्व प्रकार निशीर्णास आजान भाव सान साव राजन दास पानन पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंकान रंग कालान काल अंकुतंग आपापंग गतमेतपाद गुणगन उदार मनुष्णाम निर्मय काम अद्रुपतन मित कथखंड आलस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्वा प्रणाडय अंडंडवाडय चाचरी छन तो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करेंद्र नामे अकामे गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर नामे अकामे कुयंग प्रयाद छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पालै चतर कालै चतर पास है चतर चक्र वास है चतर चक्र मानिया चतर चक्र दानी है चाचरी छंद न सत्रह न मित्रे न पर मंगन पित्रे न कर मंगन काय जन्मंग जाय न चित्रे न मित्रे परे पवित्र प्रतिश्य दृश्य अदृश्य कृष्य प्रभुति छंद तो प्रसाद कथते कि आशे देशे की आप पेशे की आग जन्मे की आप जन्मे की आप लोके की आदुत अवधुत बनने की विभूत करने की राजंग कमाएंगे धर्मंग तु जाएंगी आसुक बनने की सर्वा पढ़ने की जटना करती हैं शतरंग क्षति हैं कि ब्रह्मंग स्वरूप के अनुभव रूप है कि आद देवे कि आप पेवेंगे चित्रे में हिने के दीने की रोजी रजाके रही मेरे आके पाक गैब है कि गैब उल गैब है कि अफल गुनाह है कि शाहन शाह है कि कान कुनिंदे कि रोजी दिनदे कि राजक रही में कर्म करी में सर्वंग कलियेंगे सर्वंग दलियेंगे सर्वत माने सर्वत दाने सर्वत गौने सर्वत पाने सर्वत देशे सर्वत पेशे सर्वत राजे सर्वत साजे सर्वत दीने के सर्वत लीने के सर्वत जाओ सर्वत पाओ सर्वत देशे सर्वत पेशे सर्वत काले के सर्वत पाले के सर्वत हंता के सर्वत गंता कि सर्वत्र पेखी सर्वत पेखी के सर्वत काज के सर्वत राज के सर्वत शोक के सर्वत पोके के सर्वत त्राण है सर्वत प्राण है सर्वत देश है सर्वत पेश है सर्वत मानी है सदैव प्रदानी है सर्वत जापे सर्वत तापे सर्वत पाने के सर्वत माने कि सर्वत इंद्र के सर्वत चंद्रे के सर्वंग कलीमे के परमंग फहीमे के आकल अलामे के साहिब कलामे के हुस्न वजूए तमाम वजूए कि हुस्न वजूए तमाम वजूए हमेश सलाम सलीकत गुनामे गनी मर शिकस्ते गरीब उलपरस्ते बिलंदर मकान जमीन उलजमान तमीज उल तमाम रजूदान हरीफ उलजी मन जाय यकीन है अनेक उल तरंगे भेदे पंगे अजीज उल निवाज गनीम फिराज निरुक स्वरूप त्रिमुखत विभुगत प्रभुगत पवाए सुजुग सुदाय सदैव स्वरूप भेदी अनुपय समस्त पराय सदा सर्वसाय समस्त सलाम सदैव कामे निर्वास रूपे गादे अनुपय वाद रूपे नास रूपे अनंगी अनाम त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिवादे अगंजे गादे सुभंग सर्पागे सर्वानागे त्रिपुग स्वरूपे छिज्य छूते किन्नरक पनासे पितृपवासे निरुक्त प्रमाय सदैव सदाए विभुग स्वरूप प्रजुक्त अनुपय निरुक्त सदाए विभुगत प्रवाह अनुकत स्वरूप प्रजुक्त अनुपय निरुक्त सदाए विभुगत प्रवाह अनुकत स्वरूप प्रजुक्त अनुपय चाचरी छंद अपंगे अनंगे पेक्या लेक्या परमे कर्मे नाद जुगादे जय वह भूते तूते नासे दुआसे तंदे बंदे अब भगते विरक्त नास प्रकाशन चिंतन सुनते हैं लिखे हैं दिखे हैं लेखे हैं पेखे राय गाय समय गम मैं नीरण आदे अनित्य है सुनित्य है अजात है अजाद है चपट छंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग कर्म सर्व धर्म सर्व युक्ता सर्व मुक्त सावल छंतो प्रसाद नमो नरक नासे सदैवंग प्रकाशे नंगंग स्वरूपे पंगंग विभूते प्रमाथे प्रमाथे सदा सर्वसाते अघास रूपे निर्वात विभूते नंगी नाम त्रिभंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकंग सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवंग प्रमा हैं अजय हैं अजाय भगवती छंद तो प्रसाद कि जाहर जहूर हैं कि हाजिर हजूर हैं हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग हैं कि उसन चराग हैं कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी दहिंद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि उसनल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शिकन है हिरासुल फिकन है कलंक कंकनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकंक पनास है बहिस्तुल निवास है कि सरबुल गमन है हमेशुल लवन है तमामुल कमीज है समस्तुल अजीज है परंग परम ईश है समस्तुल अदीश है अदेशुल अलेख है अमेशुल अपेक है जमीलुल जमा है अमितुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचरंग प्रकाश है कि हम तो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि हम तो विभूत है कि हम तो फसा है कि आत्म प्रवाह है
के अचरंग अनंग है कि अमितो अपंग है मधु वार छंद तो प्रसाद मनमन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबरगंज हरनर प्रपंच अनगन प्रणाम मनमन सलाम हरना रखंड भरना रमन अनुभवनाश मनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अंशे जंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जलथल मंडे दिशे भांडे जलथल महानते

चरणाम अंशिजगात आजिद नबात अंचंजगात अंडंजबात अंटपंडार अंटडबार आदिठ कर्म आतटीठ कर्म अनवन अनंते दाता मंथर बोल मना छंद तो प्रसाद करुणालय है अर्कालय है कलखंडन है वैमंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है कृत्य तरण है जगके

0: ब्रह्मंड है, खलखंड है, परते पर है, परनाकर है, अजप्पा जप है, थप्पा थप है, अकृता कृत है, अमृता अमृत है, अमृता अमृत है, करुणा कृत है, अकृता कृत है, धरणी कृत है, अमितेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता अमृत है, अजवा कृत है, अमृता अमृत है, निर्नायक है, खलकायक है, विश्वम्बर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्वायक है, नृपनायक है, सर्पायक है, प्रोपंजन है, अर्घंजन है, दीप्तापन है, जपतापन है, अकलकृत है, सर्वाकृत है, कर्ताकर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जिसके जैसे पूजन प्रया छंद नमो सूर सूचे नमो चंद्र चंदे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तामसंग सात रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कला कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास खास गंज अपंज अलख
1: अनाम काम गा अडा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे कर्मंग ब्रमंग अंजे लेखे भुजंग प्रिया छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे गंजुल नामे समस्तुल निवासे निरकाम भूते समस्त स्वरूपे गु कर्मंग प्रणासी धर्म विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते अजाय गनी में हरियंग करियंग करिमुल रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव शुभम सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगम विभूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगम विभूते प्रसाद सोई है एक ओंकार सदगुरु प्रसाद पाशी दसवीं सराव सुत समूह सिधान के देख रहे होकर जोग जति के सूर सुराजन सुत सदा देख संत सब अनेक पति के सारे देश को देख रहे हो मत कौन देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाई कृपाऊं देख रती अनेक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग अनूप दंग सुरंग सवारे कोर तुरंग कुरंग से गुत पौन गौन को जात निवारे भारी भुजान के भूत पलि विद्यावशीष न जात विचारे इते पये तो कहाँ पै भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश स्थान को बाजत टोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत है राज दारे भूत पविक भवान के भूपत कौन गने निजात विचारे शिरपजी प्रवान भजे में अंत कुंत के ताम सुधारे तीरथ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक विशेख है बेद पुराण कतेब कुरान जबीन जबान जबान के पेखे पौना हार जति अतार से वैसे विचार हजार के देखे श्री भगवान पर जेपन भूपत एक रति बन एक नलेख है सुध सुपा दुरंद पा सुशासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान पर हेमन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर हरीन बरोर ममासन माते मतंगन मान बलेंगे शिरप शिरपवान कृपा बिन त्याग जहान दहान चलेंगे वीर पार बड़े बड़ियार चारे सार की तार पछैया तोरत देश मलिन मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हा सुबातन एक चार लवैया साहिब श्री सबको सरनायक जाचक अनेक स्वेक दिवैया दानव देव फनिन निसाचर पूत भगवान जपेंगे जीव जते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जय तुन पापन के पुंज घपेंगे साध समूह पर सन फेरे जग सत्र सभे अवलोक जपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र आदव जोन त्रिलोक को राज करेंगे कोटि स्नान गजातिक दान अनेक स्वयं बरसाज भरेंगे ब्रह्म हि सर्विशन सीपत अंत फसे जम्फास फिरेंगे जे नर शरीफ पद के प्रसय पक ते नर फे नदे तरेंगे कहा पयो जो डोरो चुन मूंद के बैठ रहे वक्त हन लगायो नाथ फिरोली सात समुन्द्र लोग गयो पर लोग गुवायो बास कियो बिख्यान सुबैठ के ऐसे ऐसे सुबैस बितायो साज कहूँ सुन लियो सबैजन प्रेम कियो तनी प्रपायो काहू ले पाहन पूछते रहो सिर काहू न लिंग रे लटकायो काहू लख्यो हरा वाची दिशा में का पुछा को शीस निवायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सभी जाग श्री भगवान को भेद न पायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सभी जाग श्री भगवान को भेद न पायो ਕਵਿ ਆਵਾਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਪਾਸ਼ੇ ਦਸਵੀਂ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਬ ਜਰਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਵੈ ਤੁਮ ਕਹੋ ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੋਹੇ ਬਚਾਓ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਵੈ ਕਰਤਾਰਾ ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੇ ਕਰੀਏ ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਦਿ ਸੰਘਰੀਏ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮੇ ਛਾਟ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉਂ ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉਂ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਏ ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਏ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਮੁਝੇ ਉਭਰੀਏ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤ੍ਰਾਸ ਨਿਵਰੀਏ ਪੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ ਸਿਰੀਅਸ ਤੁਜੋ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੈਂ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਬੰਦ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ਤੁਮੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰ ਦਸਕੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸਾ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ ਵੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋਤੀਓ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਏ ਹਮਾਰਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣਾਇਓ ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਇਓ ਆਦਿ ਅੰਤੇ ਕੇ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾਜਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਸ਼ਿਵਕਨ ਕੋ ਸ਼ਿਵਗੁਣ ਸੁਖ ਦਿਓ ਛਤਰਨ ਕੋ ਪਲਮੋ ਬਧ ਕੀਓ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਏ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੇ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਨੇ ਜਬ ਉਦ ਕਰਕ ਕਰਾ ਕਰ ਤਾਰਾ ਪ੍ਰਜਾਤਰ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ ਜਵਾ ਕਰਕ ਕਰਤ ਹੂ ਕਬ ਹੂੰ ਤੁਮੇ ਮਿਲਤ ਦੇ ਤਰ ਸਭ ਹੂੰ ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੇ ਤੁਮ ਸਭ ਹੀਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ ਜਾਨਤ ਵੇਦ ਭੇਦ ਰਿਆਲਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਨਿਰਲੰਬ ਆਦਿ ਨੀਲ ਨਾਦ ਸੰਭ ਤਾਂ ਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ ਜਾਂ ਕੋ ਭੇਵ ਨ ਪਾਵਤ ਵੇਦਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਹਾ ਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨ ਜਾਨਤ ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਪਿਵ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ ਕਹਿੰਬੇ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ਏਕੇ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ਰੰਗ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਈ ਭੂਪਾ ਅੰਡਤ ਜੇਰਸ ਏ ਤਜਕੀਨੀ ਉਤਬਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ ਕਹੋਂ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਕਹੋਂ ਸਿਮਟ ਭਿਓ ਸੰਕਰੀ ਕੈਠਾ ਸਗਰੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸੇ ਅੰਭਵ ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਉਬਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ਸਕਲ ਮਲੇਚ ਕਰੋ ਰਣਘਾਤਾ ਜੇ ਅਸ ਤੁਜ ਤਾਉ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹੋਇ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਪਟਾਰੇ ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੈ ਤਤਕਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਨ ਜਾਏ ਨਿ ਹਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨਿਕ ਮੋ ਹਰ ਹੋ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਘਰਮੋ ਸਭ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਛਾਏ ਛਵ ਸਕੇ ਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੇ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਬਾਰਾ ਜਿਨ ਨਰਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਾ ਆਧਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ ਖੜਕ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹੱਥ ਲਿਓ ਉਬਾਰੀ ਸਰਬ ਠੋਰ ਮੋਹੋ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਓ ਬਚਾਈ ਖੜਕ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਲਿਓ ਉਬਾਰੀ ਸਰਬ ਠੋਰ ਮੋਹੋ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਓ ਬਚਾਈ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ
0: ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਨੇ ਨਿੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹਨ ਪੈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸਿਰ ਤੇ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਾਂ ਨਾਹੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਉਤਕਾ ਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਲਓ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭ ਨਾਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੈ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ ਨਾਮ ਜਿਨਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ ਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਕਰਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨਾਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਭੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਬਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸਭਾਗੈ ਘਰ ਸਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੋਂ ਦਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ दुर्कर्म पाया तुद जिन का से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुखुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवे बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवे बाजो क्या करे वेच आरिया तुद बास समृत को एनाई कृपा कर बनवारिया एस नोहो थाओ नाई सब लाख सवारिया कहे नानक लिवे बाजो क्या करे वेच आरिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जाने आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विकटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरो जिनका मोह टुटा तिनका सब सचे सवारिया कहे नानक एव आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावे पावे तो सो जन दे जिसनू होर क्या करे विचारिया एक परम पूले फेरे दे जिसक नाम लाख सवारिया एक परम पूले फेरे दे जिसक नाम लाख सवारिया गुर प्रसादी मन पया निर्मल जिन्ना पाना पावे कह ना जिस दे प्यारे सोई जन पावे आओ संत प्यारी हो गावो सच्ची बाणी बाणी ते गावो गुरु केरी बाणी आसिर बाणी आओ संत प्यारी हो कत की करे कहानी करा कहानी कत के रिकित द्वारे पाइये तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइये आओ संत प्यारी हो कत की करे कहानी करे कहानी कत के रिकित द्वारे पाइये तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइये हुक्म मनियो गुरु केरा गाओ सच्ची बाणी कहे नान सुनो संतो कच्छो कत कहानी ए मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाए किन्ना तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एर भरम पुलाया माया मोहनी तिने कीती जिन ठगोली पाइया कुर्बान कीता तसे विटो जिन मोह मीठा लाया कहे नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सत संभाले एव कुटुंब तुझे देखता चले नाही तेरे नाल साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चितलाई है ऐसा काम मूले न कीचै जित अंत पछोत आई है सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सत संभाले अगम गोचरा तेरा अंत न पाया अंतो न पाया किने तेरा अपना आप तू जान है जिए जन सब खेल तेरा क्या को आख वखाण है आखे ते वेखे सब तू है जिन जगत उपाया कहे नानक तू सदा गम है तेरा अंत न पाया सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जिए जन सब तुद उपाय एक वेक प्रसन्न आया लब लोभ अंकार चूका सतगुरु पल्ला पाया कहे नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया भगता की चाल निराली चाला निराली भगता केरी बिखम मार्ग चलना लब लोभ अंकार तत्ष्णा बहुत नाई बोलना खनियो तिखी वालो निकी एत मारक जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी कहे नानक चाल भगता जुग जुग निराली ज्यू तू चलाए तिव चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे ज्यू तू चलाए ते वे चलना जिना मारक पावे कर कृपा जिन नाम लाए से हर हर सदा तिहावे जिसनो कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे कहे नानक सच्चे साहेब ज्यों पावे ते वे चलावे एहो सुहिला सबद सुहावा सबदो सुहावा सदा सुहिला सतगुरु सुनाया एहो तिनके मन वसिया जिन धुरों लिखिया आया एक फिरे कनेरे करे गल्ला गली किने न पाया कहे नानक सबद सुहिला सतगुरु सुनाया पवित्र होए सेजना जिनी हर त्याया पवित्र होए गुरु जिनी त्याया पवित्र माता पिता कुटुंब सहित स्यों पवित्र संग सभाइया कहंदे पवित्र सुनदे पवित्र से पवित्र जिनी मन वसाया कहे नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर त्याया करमी सहज न उपजै विण सहजे सहसा नह जाए सहसा किते संयम रहे कर्म कमाए सहसे जियो मलीन है कि संयम धोता जाए मन धोवो शबद लागो हर्षो चतलाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इव जाए जियो मैले बाहरो निर्मल जियो त मैले तिनी जन्म जुए हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जु बेतालिया कहे नानक जिन सस्त जिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बाहरो निर्मल बाहरों तो निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुँचे नाही मनसा सा समानी जन्म रतन जिनी खट्टे आप भले सेवन जा रहे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरनाले जे को सिख गुरु से ती सन्मुख होवै होवे सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरनाले गुर के चरण हृदय ते आए अंतर आत्मे समाले आप छठ सदारे परणे गुर बिन अवर न जाने कोए कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए जे को गुरते विमुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै पावे मुकत न होर थे कोई पुछो विवेकिया जाए अनेक जूनी परम आवै बिन सतगुर मुकत न पाए फिर मुकत पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुकत न पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारी हो गावो सच्ची बाणी बाणी ते गावो गुरु केरी बाणी आसिर बाणी जिनको नजर करम होवै हृदय तिना समानी पीवो अमृत सदारो हर रंग जपियो सारिंग पानी कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ते कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित करे रसना रहा कछु न जानी चित जिनका हिर लिया माया बोलन पै रवानी कहे नानक सतगुरु बाजो और कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ सब सेती मन मिलया सच्चे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ से सकत आप पाए कह करता आपे हुकुमरता है हुकुमरताए आप देखा गुरमुख किसे बुझाए तोड़े बंधन होवे मुका शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै इक सुन लिव लाए कहे नानक आप करता आपे हुकुम बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप बीचार दै तते सार न जानी गुरु बाजो तते सार न जानी तिही गुणी संसार भरम सुता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते सेजन जागे जिन्ना हरमन वस्या बोले अमृत बाणी कहे नानो सुतत पाए जिसनों अन दिन हर लिव लागे जागत रहन विहानी माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिया मनो क्यों विसारिया ए वरदाता जी अगर में आहार पहुंचावे उसनों क्यों पोहे न सकी जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए कहे नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारिया जैसी अगर उदर में तैसी बाहर माया माया गन सब इको जे ही करता है खेल लचाया जां तिस भाणा तां जम्मिया परवार पला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जिथर विसरै मोह उपजे भाव दूजा लाया कहे नानक गुरप्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया हर आप अमूलक है मुल न पाए जाए मुल न पाए जाए किसे विटो रहे लोग विल लाए ऐसा सतगुर जय मिला तिसन सिर सौंपिए विचों आप जाए जिसता जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए हर आप अमोलक है भागते ना के नानका जिन हर पल ले पाए हर रास मेरी मन वणजारा हर रास मेरी मन वणजारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जपियो जियो लाह खटियो दिहाड़ी ए धन ते ना मिलया जिन हर आपे भाणा कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ वणजारा हे रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए होरत किता जिचर हर रस पल्ले न पाए हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बहुना तृष्णा लागे आए यो हर रस कर्मी पाई है सतगुर मिले जिसाए कहे नानक होर अनरस सब विसरे जहाँ हर वसे मन आए ये शरीरा मेरिया हर तुम्हें जोत रखी तातु जग में आया हर जोत रखी तुद विच तातु जग में आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया गुरप्रसादी बुझिया जां वेखा गुरप्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कहे नानक सृष्टि का मूल रचिया जोत राखी तातु जग में आया मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सकी गृह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए शोक दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सभागे आपना फिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कहे नानक प्रभु आप मिलिया करण कारण जोगो ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तू कर्म कमाया के कर्म कमाया तू शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन नचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हरमन वसिया पूर्व लिखिया पाया कहे नानक ए शरीर परवान हुआ जिन सतगुर से उचित लाया ए नेत्रो मेरियो हर तुम्हें जो धरी हर बिन वर न देखो कोई हर बिन वर न देखो कोई नदरी हर निहालिया ए विश संसार तुम देखते एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जां वेखा हर एक है हर बिन वर न कोई कहे नानक एह नेत्र अंसे सतगुर मिलया दिव दृष्ट होई ए स्वर्णो मेरियो साचे सुनने नो पठाए साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जि सुनी मंतन हरिया हुआ रसना रस माणी सच अलख विडानी ताकि गत कही न जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचे सुनने नो पठाए हारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पवन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया ते अनेक रूप नाव नवनिध तिसदा अंत न जाई पाया कहे नानक हर प्यारा जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया एहो साचा सोयला साचे कर गावो गावत सोयला कर साचा जिथे सदा सच ध्यावे है सचो ध्यावे है जात उत भावे गुरमुख जिना बुझावे जो सत सपना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावे कहे नानक सच सोयला सच्चे घर गावे है अनसुन

हरे नाम राष्ट्रपति जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत व्याख्यान योग अभ्यास क्रम त्रम किरिया सकल त्याग बन मध्य फिरया।

इन अवरुद्ध देशे आप न करे आवत जावत जन में मरे जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरे संसार जो तुम पाने तिन पब जाता नानक उन जन चरण पराता करू बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आपे माने आपे आप करत निबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा उपाव सियानप सकल ते रह सब कचाने आत्म की रह जिस पावे तिस लय लड़ लाए थान तरंतर रहा समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक

अश्वदी जय प्रसाद छत्ती अमृत खाहें तिस ठाकुर को रख मन माहें जय प्रसाद सुगंधत तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जय प्रसाद वसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याये त्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसते त्याग कत अपर लुभावे जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पैर ताका जस गावी जय जय प्रसाद तुझ सबको माने मुख ताको जस रसन बखाने जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन साथ सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावे नानक पद सेती कर जावे जय प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जय प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताके जय प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सा सा सिमरो प्रभ ऊंचे जय प्रसाद पाई दुलभ दे नानक ता की भगत करे जय प्रसाद अभूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद अश्व हस्त अश्वारी मन तिस प्रभ को कबू ना बिसारी जय प्रसाद बाघ मिलक तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई तिसे त्याय जो एक अलख है इहा हुआ नानक तेरी रख है जय प्रसाद करे पुन बोदान मन आठ पहर कर तिस का ध्यान जय प्रसाद तू अचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास सितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह जय प्रसाद सुने करना जय प्रसाद पिखे बिस्मा जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न बनो मन विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रेमन मूर तू ताको जाप जय प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साज रेमन मेरे तू दास्यो राज जय प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सुनाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपाते होए प्रगास प्रभु दयाते कमल विकास प्रभ सुप्रसन्न बसे मन सोए प्रभ दयाते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभ तेरी माया आपो कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इन कह कछु न हाथ श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना चर्च कथा अष्टपदी साध के संग मुख उजल हो साध संग मल सगली खो साध के संग मटे मान साध के संग प्रगटे सुज्ञान साध के संग बुझे

0: साथ संग सब होत निबेरा साथ के संग पाए नाम रतन साथ के संग एक ऊपर जतन साथ की महिमा का वर्णय कौन प्राणी नानक साथ की शोभा ब्रह्मा ही समानी साथ के संग अगोचर मिलाय साथ के संग सदा प्रफुल्लय साथ के संग आवे बस पंचा साथ संग अमृत रस पुंचा साथ संग होए सब रेन होए सब की रेन साथ के संग मनोहर बैन साथ के संग न कतूत आवे साथ संग अस्तित मन पावे साथ के संग माया ते पिन साथ संग नानक प्रभु सुप्रसन्न साथ संग दुश्मन सब मी साधु के संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साध के संग न बीगा पैर साध के संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नाही हो ताप साध के संग तजह सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नान साध प्रभु बने आई साध के संग न कपूत आवे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस अगोचर लह साधु कै संग अजर सह साध कै संग बस थान ऊंचा साधु कै संग महल पहुंचा साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निधान नान साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उधार है साध संग साजन मिट कुटुंब निस्तार है साधु कै संग सो तन पावे जिस तन ते सबको वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्वथान गम नान साध के संग सफल जन्म साध के संग नहीं कच काल दर्शन पेटत होत निहाल साध के संग कलुखत हरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छा है सोई फल पावे साध के संग न बिरता जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उधरै साध सुन रसै साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मनते विसरै साध संग सरपन निस्तरै साध के संग लगे परम मीठा साधु के संग कट कट डीठा साध संग पै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की महिमा भेद न जाने जेता सुने तेता वख्याने साध की उपमा तेह गुणते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊचते ऊंची साध की शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद ना पाई सलोक
1: मन साचा सोए अवर न पिखे कस बिन कोए नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुलपवान ब्रह्म ज्ञानी कै तीरज एक ज्यों बसदा को खुद है को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल त निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश जैसे तार ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन

के सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी क्या गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा। ब्रह्म ज्ञानी क्या नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी लेतावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी क्या हो सो पला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सकल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सकल संसार। ब्रह्म ज्ञानी क्या एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी क्या बसे प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कार सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी क्या हो अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभा, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सकल मन मा है। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए दाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब शिष्य का करता, ब्रह्म ज्ञानी

0: जाचक जन जाचे प्रदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें ते आवो चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की निधनीत एक ओट एक को आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार प्रभु की दृष्ट महासुख होए हर रस पावे बिरला कोए जन चाख्या से जन तृप्ताने पूरन पूर नहीं पूरन पूरख नहीं डोलाने सुवर परे प्रेम रस रंग उपजय चाओ साध के संग परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अंतिम लिव लाग बडभागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल वंदन काट मुकत जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया एच पुनी सरदा सब पूरी रव रहा सद संग हजूरी जिसका साथ इन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों विसरे जे कालनक पाने सो क्यों विसरे जे किया जाने सो क्यों विसरे जिन सब किस दिया सो क्यों विसरे जे जीवन जिया सो क्यों विसरे जे अगन में राखे गुरप्रसाद को बिरला लाखे सो क्यों विसरे जे बित बिकते काटे जन्म जन्म का टूटा काटे गुरपुरे तत एव बजाया प्रभ अपना नानक जनते आया साजन संत करो ए काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अभरे नाम जपावो भगत पाए त्रिये संसार बिन भक्ति तन होसी छार सरब कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नाम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर ही सुहाओ नेत्रोपेक तरत सुख होए मन बिकसे साध चरण धोए भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे कर मया गुरप्रसाद नाम जप लाया ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रहया सर्ब समाए प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत वछल सदा कृपाल नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर्त प्रतपाल आद पूरक कारण करतार भगचना के प्राण धार जो जो जपे सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरक भगवान सर्व वैकुंठ मुकत मोख पाए एक नमक हर के गुण गाय अनेक राज भोग वड्याई हर के अनेक राज भोग वड्याई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर अनीत पली सुकरनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत साध संग प्रभ देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब आकार एक अष्णा दृष्टेता पापुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाज तब बैर विरोध के संग कमा जब इसका वरण चहन न जापत तब हरक सो कहो किसे व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम आपन खेल आवर्ती जा नानक कर न हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कहो किसको गनी जब एक है हर अगम पार तब नरक सुरक कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सब सहज सुभाए तब सुशकत कहो के थाए जब आप अपनी जोत तरह तब कवन डर कवन कत डरह आपन चरित आप करण हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तय जन्म मरण कहो का विनाशन जब पूरन करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पथ होता तह मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौ मान कौन अवमान जय स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत कहो कीस जय जो स्वरूपी जो संग समावै तह किस भूख कवन तृप्तावै करण करावन करने हार नानक करते का नाहि सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई
1: जय सर्व कला आपे प्रवीण तय वेद कतेब कहा को चीन जब आपन आप उतार है तो सगन अप सगन कहा विचार है जह आपन ऊंच आपन आप निरत है कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अचल अछेद अपेत समाया उहा किस है व्यापत माया आपस को आप आदेश तह गुण का नाही प्रवेश जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिन किस लागे चिंता जय आपन आप अतियारा तह कौन कथ है कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक आपस को आप पहुंचा जय आप रच्यो परपंच आकार तह गुण मह कीनो विस्तार पाप पुण तय पही कहावत कौ नरक कौ सुरक बंछावत आल जाल माया जंजाल हम मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोचै तो नानक एक है जह अवगत भगत है आप जह पसरे पासा संत प्रताप दुहू पाका आपे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौतक करे अनंत चोज आपे रस भोगन निर्जोग जिस पावे तिस आपन नाये लावे जिस पावे तिस खेल

निकट कर पे एक साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साथ संग अगन सागर तरो हर तन के पर ले पंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद घट साध संग भाजे परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम सलोक साध के वचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कुमावत होत उधार आप करे लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शबद नाहद बाजे सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजे प्रगटे गोपाल माथ के माथे नानक उतरे तिनके साथे शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर पए सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न पए गुरुदेव पूरन होई सेवक की सेव आल चंजाल बेकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभतारी नानक निभि खेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रदान पुरक प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए स्थान बहुर न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नवनिद

0: सचो सच बरताया, जिस तू दे जिस मिले सच ता तिनी सच कमाया, सतगुर मिले सच पाया, जन तैसते सच बसाया, मूर्ख सच न जाननी मनमुखी जन्म गवाया, बिच दुनिया काहे आया, दुनिया काहे आया।
1: हो सके

कहो नानक बिन हर भजन तीर्था जन्म सिराना। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम तेह जाना। हर ज

गुरु वाहिगुरु, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। एक बहादुर सिमरी है कर नौ निध आवै ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई हुए सहाय। दसों ही पातशाही आंदे आत्मक सबरूप।